0: நேயர்களே, இன்று இரவு 7 மணிக்கு FM ரெயின்போ 101.4 MHz இந்திய அரசின் வேளாண்மை மற்றும் உழவு நல அமைச்சகம் வழங்கும் ஃபார்ம் டு சிட்டி.
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी.
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है. आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है. समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुँचाती है.
2: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें.
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी.

0: कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111
1: नमस्कार। कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं निशा भारद्वाज अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स 111 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अपनी मन की बात में लिए गए विभिन्न विषयों में से किसी एक विषय पर केंद्रित होता है। माननीय प्रधानमंत्री ने अगस्त और सितम्बर माह में आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे 100 सप्ताह के अभियान नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का उल्लेख किया है। तो आज के हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। विकसित भारत के लिए देश में युवाओं का नशा मुक्त होना क्यों आवश्यक है और इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसी समस्त जानकारी देने के लिए आज आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी। नमस्कार सर, और बहुत स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद निशा जी।
1: श्रोताओं, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक युवा देश है और यही युवा शक्ति हमारे देश को विकसित भारत बनाने का सबसे बड़ा आधार है। लेकिन इस सुनहरे भविष्य की राह में नशा एक ऐसी दीवार है जो हमारे युवाओं की क्षमता को कमजोर करती है। तो इससे पहले कि हम आज की अपनी बातचीत का क्रम आगे बढ़ाएं, आइए पहले सुनते हैं मन की बात कार्यक्रम का वो अंश जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय का उल्लेख कर रहे हैं।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माय भारत के वॉलेंटियर शामिल है, एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है

0: तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं।
1: तो श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम पोस्ट वॉक्स नंबर 111 में। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और हमारे साथ हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध नशा मुक्त भारत अभियान आज एक बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। इस अभियान का असली उद्देश्य क्या है? भारत के युवाओं के लिए और देश को आगे बढ़ाने यानी विकसित भारत बनाने के लिए इसका नशा मुक्त होना क्यों जरूरी है?
2: देखिए, आज अगर हम विश्व में देखें तो भारत में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ 15 वर्ष से लेकर के 29 वर्ष तक की जो एक ब्रैकेट है, इसमें 37 करोड़ युवा हैं। ये युवा ही आज हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है, और यदि इस युवा शक्ति को हम अपने राष्ट्र के विकास में सही तरह से उपयोग में लाते हैं तो ये हमारे लिए एसेट बनेगा। लेकिन अगर यही युवा अपने आप को ड्रग्स वगैरह के एडिक्शन में, अल्कोहल के एडिक्शन में अगर एंगेज कर लेते हैं तो इनका जो कंट्रीब्यूशन हमारे राष्ट्र के विकास में होना चाहिए वो हो नहीं पाएगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी इस स्कीम पे बहुत जोर दे रहे हैं, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। जो भी विकसित देश आज विश्व में हैं, उन्होंने अपनी युवा शक्ति को अच्छी तरह से हार्नेस किया है, उनकी एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से यूज किया है, और यदि हम विकसित बनना चाहते हैं 2047 तक तो हमें भी यही करना होगा।
1: जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगला प्रश्न ये है सर कि मादक द्रव्यों का सेवन एक जटिल और निरंतर बदलने वाली चुनौती है। पूरे देश में ये समस्या कितनी बड़ी है और किस तरह की नई नई प्रवृत्तियां देखने को सामने आ रही हैं? इसका पता लगाने के लिए क्या कुछ प्रणालियां अपनाई जा रही हैं?
2: देखिए, ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर है एम्स दिल्ली में, तो उन्होंने एक नेशनल सर्वे किया और उस सर्वे में उन्होंने अल्कोहल का, ड्रग्स का और जो इंजेक्टेबल सब्सटेंसेस होते हैं इन सभी का उन्होंने सर्वे से पता लगाया। तो इसमें ये मालूम चला कि आज की तारीख में हमारे देश में लगभग 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अल्कोहल का सेवन करते हैं, और इनमें से करीब 5% ऐसे हैं जो कि इस पे डिपेंडेंट हैं, जो इसके बिना कुछ कर नहीं पाते। और इसी तरह से जो गांजा है या उसके जो और पदार्थ हैं तो उनकी संख्या भी 3 करोड़ से ज्यादा है, और जो ओपियोइड्स हम बोलते हैं उसकी संख्या करीब 2.25 करोड़ है। और जो चिंता का विषय इसके अंदर है वो ये है कि इसमें बच्चों की और एडोलेसेंट्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो ये सब इस सर्वे के थ्रू सामने आया है। इसके अलावा समय समय पर जो है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी होते रहते हैं, तो इन सब से भी हमें जानकारी मिलती है कि ये समस्या कितनी बड़ी है। और जो सीजर्स हो रहे हैं, जो प्रिवेंटिव मशीनरी जो हमारी जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, तो ये सब भी जो है इनके सीजर्स किस तरह से हो रहे हैं उससे भी हमें आइडिया लगता है कि ये समस्या कितनी बढ़ गई है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल के मन की बात के कार्यक्रमों सहित विभिन्न अवसरों पर विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा के महत्व पर बार बार बल दिया है। आप स्वस्थ एवं नशा मुक्त युवा आबादी और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में भारत की यात्रा के बीच संबंध को किस प्रकार देखते हैं?
2: देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारी जो युवा शक्ति है ये हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। आज की तारीख में हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। इन युवाओं की प्रोडक्टिविटी का हमें पॉजिटिव यूज करना है, और आज की तारीख में जैसा हम देखते हैं कि 37 करोड़ युवा हैं जो करीब 27% हैं हमारी जनसंख्या का। ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा, धीरे धीरे हमारी जनसंख्या भी स्टेबलाइज हो रही है, और ये अनुमान लगाया जाता है कि 2036 तक जो है ये युवा जो एक ब्रैकेट है इसके अंदर करीब 22% लोग बचेंगे। तो इन्हें हमें पॉजिटिवली यूज करना है। अगर एक युवा नशाग्रस्त होता है तो उसका स्वास्थ्य खराब होता है, और अगर उसको उसका परिवार नशे के लिए पैसे नहीं दे पाता है या उसके स्वयं के पास वो नहीं कमा पाता है तो वो छोटे मोटे अपराध भी करने लगता है। तो समाज को ये नुकसान होता है कि उसमें एक अपराधी उत्पन्न होता है। तो एक युवा के नशाग्रस्त होने पर युवा का नुकसान होता है, परिवार का नुकसान

0: होता है, समाज का नुकसान होता है, यानी कि राष्ट्र का नुकसान होता है। तो इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने युवाओं को इससे दूर रखें, क्योंकि तभी हम अपने विकसित भारत का अरमान पूरा कर पाएंगे, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो एक उद्देश्य दिखाया है, तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे।
1: तो ये मान सकते हैं कि लक्ष्य बहुत बड़ा है और समय बहुत ही सीमित है हमारे पास। इससे पहले कि हम चर्चा अपनी आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सुनते हैं ये गीत।

0: से सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है।
1: देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि जो सरकार के अलग अलग विभाग हैं वो इसमें मिलकर काम करें, और साथ में हम समाज को भी जोड़ें, परिवारों को भी जोड़ें। तो जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार इसमें चार स्तंभों पे काम कर रही है: प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड रिहैबिलिटेशन। तो प्रिवेंशन का मतलब ये है कि जो भी ये पदार्थ हैं इनकी उपलब्धता को कम करना, उसको रोकना, जो ट्रैफिकिंग वगैरह हो रही है, इस पे हमारा गृह मंत्रालय काम कर रहा है, उनकी एजेंसियां काम कर रही हैं। दूसरा स्तंभ जो मैंने बताया, प्रोटेक्शन, तो हमें ये अवेयरनेस फैलानी है कि इन चीज़ों के कितने दुष्प्रभाव हैं। इस काम में जो हमारा विभाग है, युवा कार्यक्रम विभाग जो है, वो इस दिशा में कार्य कर रहा है। और न केवल हम अवेयरनेस फैलाते हैं, बल्कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, माई भारत पोर्टल है हमारा, उसमें हमारे वॉलंटियर्स हैं, और हमारा जो NSS है, जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में और विद्यालयों में है, 11वें और 12वें में, उसके द्वारा जो युवाओं की एनर्जी है उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में हम चैनलाइज करते हैं। बाकी के जो दो स्तंभ हैं, सपोर्ट एंड रिहैबिलिटेशन, इसमें जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट काम करती है कि अगर कोई नशे की लत में पड़ जाता है तो उसको कैसे उससे बाहर निकाला जाए और उसको कैसे सपोर्ट किया जाए। तो इस तरह से ये तीनों जो एंटिटीज हैं सरकार की, ये मिलकर इस दिशा में कार्य कर रही हैं।
0: नशा मुक्त भारत के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है, यानी कि इनको एक साथ लेकर चलने की बात की जा रही है। जमीनी स्तर पर विशेष रूप से युवाओं, परिवारों और स्थानीय समुदायों के लिए इस दृष्टिकोण का क्या अर्थ हम समझ सकते हैं?
1: देखिए, इसमें जो पूरी, अगर मैं इसको जंग कह सकूं, इसमें हमारे उनके परिवारों का, युवाओं के परिवारों का, सभी के परिवार का और समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि सबसे पहली यूनिट परिवार है जिसको ये मालूम चलेगा कि कुछ अनयूजुअल हो रहा है, कुछ चीज नॉर्मल नहीं है, तो वही इसको आइडेंटिफाई करके और जो भी इसकी तरफ बढ़ रहा है उसको वहीं रोक सकते हैं। अगर वो ज्यादा आगे बढ़ गया है तो उसका डी एडिक्शन होता है या रिहेबिलिटेशन होता है, उसकी तरफ उसको ले जा सकते हैं। समाज का ये योगदान रहता है कि अगर ऐसा कुछ भी इस तरह के पदार्थों की बिक्री हो रही है तो उसके बारे में समाज में किसी न किसी को तो मालूम चल ही जाता है, तो वो इसकी जो संस्थाएं हैं जो इसकी रोकथाम की व्यवस्था करती हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन दे। इसके अलावा अगर कम्युनिटी एकजुट होके ये कहती है कि हमारे यहाँ कोई नशा नहीं करेगा, इन सब चीजों से हम दूर रहेंगे, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बच्चे जो हैं वो बहुत चीजें, उनका जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं उसमें सीखते हैं, तो उस दृष्टि से इसमें जो हमारे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत अच्छे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे देश में काम कर रहे हैं, और इन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जब व्यक्ति जुड़ता है तो वो कई बार अपने पूरे परिवार के साथ जुड़ता है। तो इसमें भी अगर इस विषय की चर्चा होती है, इनके दुष्प्रभाव बताए जाते हैं, तो उसका भी एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से परिवार का, समाज का, जो ये समाज सेवी संस्थाएं हैं इनका, जो हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनका, हम सभी का इसमें योगदान है।
0: तो सामाजिक तौर पे हम देखें तो जागरूकता और चेतना लाना बहुत ही आवश्यक है, नितांत आवश्यक है इस दिशा में। अगला प्रश्न है, युवा कार्यक्रम विभाग ने माय भारत के माध्यम से विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान को युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलन के रूप में शुरू किया है। युवाओं को केवल लाभार्थी के रूप में देखने के बजाय स्वयं उन्हें अभियान के केंद्र में रखने के पीछे की क्या सोच है?
1: अगर हम किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे जिसको ये नशे की आदत पड़ी, तो कई बार हमें ये उत्तर मिलेगा कि ये आदत उसको क्यों पड़ी, कि वो किसी तनाव में था, उसके ऊपर कोई प्रेशर था, या जस्ट फॉर फन उसके आसपास के लोगों ने, उसके साथियों ने उससे कहा बस एक बार। ये बस एक बार जो है अनफॉर्चुनेटली बार बार बन जाता है। तो इसीलिए अगर युवा इसका लाभार्थी न होकर के खुद ही इसका संदेश वाहक होगा, तो जो ये बस एक बार की बात है, ये नशा करने के लिए नहीं कही जाएगी, ये बल्कि कोई समाज सेवा का कार्य करने के लिए कही जाएगी, किसी अच्छे काम के लिए कही जाएगी। इस दिशा से युवाओं का, खुद का इसमें बहुत महत्व है, उनकी जो भूमि

कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आपका फिर से स्वागत है और आज हमारे अतिथि हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी। तो सर, अगला प्रश्न आपसे ये है कि इन क्षेत्रों में विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा कार्य किए जाने के मद्देनजर समन्वित राष्ट्रीय कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उनकी संबंधित भूमिकाओं में किस प्रकार

0: का है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि कोई नशे में चला गया है, किसी को मालूम चला कि उसका दोस्त जो है वो नशे में चला गया है, तो उसको बहुत सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ये एक युवा उसका जो मित्र है वो उसको अच्छे से दे सकता है। तो इसीलिए इस पूरी योजना का, इस पूरी कैंपेन का फोकस ये है कि युवा इसमें सहभागी बने ना कि लाभार्थी।
1: युवा सहभागी बने और अपने मित्रों से, अपने परिवार से, अपने समाज से जब चाहे जैसी चाहे आवश्यकता उन्हें पड़े मदद ले सकें। इस तरीके का एक ओपननेस होनी चाहिए, उस तरीके का एक इंड्यूसिव एनवायरनमेंट उसको मिलना चाहिए बच्चे को। तो इसी सोच के साथ हम लेते हैं यहां पर एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के हमारे अतिथि हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी, और आज हम बात कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रम का विषय है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान दीर्घ अवधि तक युवाओं की सहभागिता बनाए रखने का प्रयास करता है। इस विस्तारित अभियान का उद्देश्य क्या है और ये एक बार की जागरूकता गतिविधियों से आगे बढ़कर निरंतर व्यवहारगत तथा सामुदायिक स्तर पर परिवर्तन लाने की दिशा में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा पाएगा?
1: जैसा कि आपने बताया कि ये कार्यक्रम जो है ये 100 सप्ताह का कार्यक्रम है। इसको 100 सप्ताह का रखने का भी एक साइंटिफिक रीजन है कि जो भी रिसर्च हुआ है उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि अगर हम किसी चीज को 21 दिन तक करते हैं तो हम उसके लिए अक्लेमेटाइज होते हैं, वो हमारे लिए एक रूटीन में आता है। अगर उसको हम 66 दिन तक करते हैं तो ये हमारी जो है ऑटोमेटिक बनने लगती है ये हैबिट। अगर हम इसको एक साल तक करते हैं तो ये हमारी लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट होता है, और अगर हम इसको 100 हफ्ते तक कर लेते हैं तो ये हमारी आइडेंटिटी में लॉक हो जाता है, ये हमारे अंदर इतना डीपली इनग्रेन हो जाता है कि फिर ये हटता नहीं। तो इसी दृष्टि से इस कार्यक्रम को 100 हफ्ते का रखा गया है। जैसे हमारा जो एनएसएस प्रोग्राम होता है जो कि हम कॉलेजेस और 11th एंड 12th में चलाते हैं, उसमें भी उसकी ड्यूरेशन भी हम लोग 2 साल रखते हैं, तो 2 साल लगभग 100 हफ्ते हो गया। तो ये इसमें जिससे कि ये उनकी एक आदत बन जाए, ये उनके जहन में उतर जाए, जिससे कि वो आगे भी कभी इस विषय में ना सोचें कि हम कोई नशा करेंगे। और इसमें एक चीज और आ जाती है कि हम केवल एक चीज पर जोर नहीं दे रहे। हमने जैसे शुरुआत हमने की थी कि हम प्लेज लेंगे, हम सभी लोग संकल्प लेंगे नशे से दूर रहने का, उससे आगे बढ़कर हम लोगों ने पूरा ये 100 सप्ताह का कार्यक्रम बनाया है। तो इसमें हम परिवार को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम समाज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम हेल्थ की बात करेंगे, फैमिली की बात करेंगे, लाइफ स्किल्स की बात करेंगे, हम जो है स्पिरिचुअल एंगेजमेंट की बात करेंगे, फिटनेस की बात करेंगे। तो ये सभी चीजों को मिलाकर के ये 100 सप्ताह का कार्यक्रम बनाया गया है।
0: तो एक तरीके से हम बात करें तो होलिस्टिक अप्रोच से आप इस चीज को केटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि नशा मुक्त जो अभियान है वो हर लेवल पर, हर स्तर पर समाज में कार्य कर सके।
1: जी,
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग समुदाय आधारित तंत्र के रूप में नशा मुक्ति मित्र नेटवर्क विकसित कर रहा है। युवा कार्यक्रम विभाग, माय भारत, एनएसएस और अपने युवा स्वयंसेवी नेटवर्क के माध्यम से जमीनी स्तर पर इस पहल को किस प्रकार पूरक सहयोग प्रदान करें कि इसे सुदृढ़ता प्रदान हो सके?
1: जैसा कि मैंने बताया था कि 3 विभाग इसमें मिलकर काम कर रहे हैं, तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ने एक कार्यक्रम लेके आए हैं नशा मुक्ति मित्र। तो ये नशा मुक्ति मित्र जो हैं वो वॉलंटियर्स हैं जो पहले ये समझेंगे कि किस किस तरह के नशे होते हैं और इनके क्या दुष्प्रभाव हैं और इसके बारे में जागरूकता फैलाएं, यदि कोई इससे प्रभावित हो चुका है तो उसको कैसे मदद की जाए, डिएडिक्शन सेंटर्स कहाँ पर है, काउंसलिंग सेंटर्स कहाँ पर है। माय भारत जो कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आज की तारीख में 3 करोड़ से ज्यादा वॉलंटियर्स हैं। नेशनल सर्विस स्कीम जो एनएसएस है उसमें आज हमारे पास करीब 40 लाख वॉलंटियर्स हैं। तो ये वॉलंटियर्स जो हैं ऑलरेडी कम्युनिटी सर्विस का काम कर रहे हैं और अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो इनको भी हम मोटिवेट कर रहे हैं कि जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का जो नशा मुक्ति मित्र है उसमें ये लोग एनरोल करें, और ये लोग कर भी रहे हैं। 18,000 से ज्यादा हमारे वॉलंटियर्स उसमें रजिस्टर कर चुके हैं, और

0: इसके अलावा हमारी पहुंच जो है वो कम से कम 30,000 इंस्टीट्यूशंस तक है, तो ये पूरे नेटवर्क को भी हम उनके सपोर्ट के लिए ला रहे हैं। पर इस पूरे में हमारा प्रयास ये है कि हम जो कार्य वो कर रहे हैं उसमें उनको सप्लीमेंट करें, ना कि उसको डुप्लीकेट करें।
1: तो इस तरह की सामाजिक चुनौती का समाधान जब हम देखते हैं तो अकेले सरकार का कार्यक्रम नहीं हो सकता। इसमें गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज संगठन, आध्यात्मिक संगठन, शैक्षणिक संस्थान, उद्योग जगत, खेल निकाय और अन्य सामुदायिक संगठन नशा मुक्त भारत आंदोलन में सार्थक भागीदार किस प्रकार बन सकते हैं?
0: आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें सभी को मिलकर कार्य करना है। तो हमने जैसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 125 से ज्यादा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस होते हैं, जैसे CII है, फिक्की है, एसोचैम है, ये भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। फिर जैसा कि जो मैंने बताया एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनके जो एसोसिएशंस हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के हैं, जैसे CIPU बोलते हैं, FC बोलते हैं, AIU बोलते हैं, ये सब भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये हम जो कोशिश कर रहे हैं होल ऑफ प्रॉब्लम अप्रोच, जो पूरी ये समस्या है इसको जड़ से लेकर के पत्ती तक इसको खत्म करना है, तो इन सभी लोगों को हमने अपनी यात्रा में शामिल किया है और हम सभी लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं।
1: तो जड़ से लेकर पत्ती तक इस समस्या का समूल जो विनाश है, हम चाहते हैं कि हमारे लिसनर सुन रहे हैं आज इस कार्यक्रम को, ये करें और इसमें भागीदार बने। लेकिन उससे पहले लेते हैं हम ही छोटा सा ब्रेक।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज हमारे साथ जुड़े हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी और हमारे कार्यक्रम का विषय है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। युवाओं को मादक पदार्थों के दुरुपयोग से रोकने में माता पिता, शिक्षक, युवा नेताओं और सहपाठियों की क्या भूमिका हो सकती है? क्या रोकथाम को केवल कभी कभार चलाए जाने वाले जागरूकता अभियानों तक सीमित रखने के बजाय युवा विकास की दैनिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जा सकता है?
1: ये बात सही है और हमने भी हमारी सोच भी यही है कि ये एक इवेंट नहीं है और न ही ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। ये पूरा जो एक समाज की जो सोच है उसमें बदलाव लाने की एक प्रक्रिया है, इसीलिए हर एक पहलू पे ध्यान दिया जा रहा है। और जो लोग समाज को प्रभावित करते हैं, प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं, ताकत रखते हैं, वो सभी इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहला उदाहरण तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का ही दूंगा, जिन्होंने ये उद्देश्य हमारे सामने रखा है कि यदि हमें विकसित भारत बनना है तो हमें नशा मुक्त होना होगा, तो वो खुद एक सबसे बड़े आइकॉन है हमारे देश में। इसके अलावा जो भी प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, हम सभी को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्पोर्ट पर्सन हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या जो एंटरटेनमेंट की दुनिया में अच्छा रसूख रखते हैं, उन सभी को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। इसके अलावा जो हमारी खुद की प्रक्रिया है वो भी युवाओं में से जो उनके अच्छे आइकन्स हैं, यूथ आइकन्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करती है। क्योंकि हम यूथ पार्लियामेंट करके कार्यक्रम चलाते हैं जो कि जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इसके अलावा हम लोग का विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग होता है जो कि बहुत बड़ा इवेंट है, अगेन वो भी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक आता है और स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस 12 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए 10, 11 और 12 को इसको भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाता है और 12 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इसमें शामिल होते हैं और पिछले दो कार्यक्रमों में उनने कम से कम 6-7 घंटे पूरे दिन में जो है इसको दिए हैं। तो इससे भी इन सभी सफल लोगों का उदाहरण देकर हम मोटिवेट करते हैं कि अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करो, नेगेटिवली नहीं।
0: जी, ऊर्जा को जो है सकारात्मकता की तरफ बहाया जाए, ना कि नकारात्मकता की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा यही है आपसे कि युवा कार्य विभाग के पास स्वयं सेवा और सामुदायिक सहभागिता का एक विशिष्ट तंत्र है। ये सकारात्मक अवसर युवाओं में विपरीत परिस्थितियों से निपटने की क्षमता को सुदृढ़ करने तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग के स्थान पर रचनात्मक विकल्प उपलब्ध कराने में किस प्रकार से सहायक हो सकते हैं?
1: देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, जो युवा है वो क्या ढूंढता है जिंदगी में, वो एक पर्पस ढूंढता है, उसको एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होनी चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी की खोज रहती है और वो चाहता है कि वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी उसको मिले जिसमें कि वो कंट्रीब्यूट कर सके। तो जो हमारे जो कार्यक्रम है, हम मेन वॉलंटियरिज्म पे हमारे कार्यक्रम जो है आधारित है। तो माय भारत जो है, तो उसमें तो राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति हमारे से जुड़ सकता है और जैसा मैंने आपको बताया, हमें खुशी है कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। फिर हमारा जो NSS स्कीम है उसमें 40 लाख से ज्यादा बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं और इसके अलावा हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन स्काउट्स एंड गाइड्स का भी है। तो ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये इन तीनों बातों का ध्यान रखते हैं, उनको एक पर्पस प्रोवाइड करते हैं, बिलोंगिंगनेस का फीलिंग देते हैं और कंट्रीब्यूशन करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो इस तरीके से जो उनकी एनर्जी है उसको हम पॉजिटिव

0: चैनलाइज करते हैं?
1: जी, पॉजिटिवली चैनलाइज कर रहे हैं एनर्जी को युवाओं की, और युवाओं को मदद कर रहे हैं उनकी लाइफ का पर्पस ढूंढने में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश प्रसारित करने के लिए संगीत, नारों, नुक्कड़ नाटकों और डिजिटल सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। माय भारत युवाओं की रचनात्मकता और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किस प्रकार कर रहा है ताकि ये संदेश युवा वर्ग तक उनकी ही भाषा में पहुंचाना सरल हो सके।
0: जैसा कि आपने बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 30 अगस्त के मन की बात में ये उल्लेख किया था कि नशा मुक्त युवा हैशटैग जो है उस पर युवा जो हैं वो कोई स्लोगन भेज सकते हैं, कोई अपना नाटक नुक्कड़ नाटक टाइप कर सकते हैं, या फिर कुछ निबंध भी लिख सकते हैं, या स्लोगन बनाए, जो भी गाना बनाए, फोक सॉन्ग बनाए, इसका उन्होंने आह्वान किया था। तो उसी दिशा में हम लोगों ने हमारा जो माई भारत पोर्टल है उस पर 4 प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं, जो कि 12 सितंबर से शुरू हुई, जो पहली जो प्रतियोगिता हुई है। इसमें हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी स्लोगन्स और स्ट्रीट प्ले और निबंध और फोक सॉन्ग्स इसमें आए हैं, और अभी इनका इवेल्युएशन करेंगे और इनमें से अच्छे वालों को रिकग्नाइज किया जाएगा। और इस चीज़ का उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से 27 सितंबर को भी किया था कि ऑलरेडी जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने जो अर्ज किया था, उसको युवाओं ने बहुत अच्छे से लिया है, और नशा मुक्त युवा के हैशटैग पर ये सारी चीजें ऑलरेडी आ रही हैं और वे जोर शोर से इसमें भाग ले रहे हैं। तो बेसिकली इस सब का उद्देश्य जो है वो ये है कि युवा जो है केवल मैसेज रिसीव नहीं कर रहे हैं, वो स्वयं के पॉजिटिव मैसेजेस अलग अलग तरीकों से बना भी रहे हैं और प्रसारित भी कर रहे हैं।
1: तो जो चैनल है वार्तालाप का, वो द्विगामी है, यानी कि आप मैसेज रिसीव भी कर रहे हैं, आप मैसेज भेज भी रहे हैं युवाओं की तरफ, संदेश दोनों तरफ से बरकरार है। तो ये हम अपने लिसनर से अपील करना चाहेंगे इसी माध्यम से कि यदि आपकी भी कोई कंटेंट है, कोई सामग्री है जो कि आपको लगता है कि इससे संबंधित है और आप उसे भेजना चाहते हैं, तो आप हैशटैग नशा मुक्त युवा पर उसको भेज सकते हैं। तो इसी के साथ हम यहां पर लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज के हमारे अतिथि हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी और हमारा आज का विषय है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। हाल की नशा मुक्त युवा गतिविधियों में स्वास्थ्य, जागरूकता और निवारक उपायों को एक साथ जोड़ा गया है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में स्वास्थ्य, फिटनेस, जीवन कौशल, स्वयं सेवा और सामुदायिक सहभागिता से जुड़े एकीकृत दृष्टिकोण को इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हुए हम देखेंगे जल्द ही?
1: बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया और पहले हमारी चर्चा भी हुई कि ये जो हमने कार्यक्रम बनाया है ये 100 सप्ताह का कार्यक्रम है, तो इसको हमने चार थीम्स में बांटा है, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, रिकवर, लीड। तो बिल्कुल ये सारे टॉपिक्स इसमें लिए जाएंगे। जैसे अभी पिछले हफ्ते जो हमने उसमें किया वो था माय हेल्थ माय प्राइड, फिट यूथ पे भी हम जाएंगे, एडिक्शन फ्री यूथ पे, लाइफ स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे, जो हमारे देश की जो संस्कृति है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कई चीजों के विषय में हम इन 100 सप्ताह में बात करेंगे और उनको इन्वॉल्व करेंगे।
0: जी सर, सरकार नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत डिजिटल निगरानी और संस्थागत समन्वय को सुदृढ़ कर रही है। प्रौद्योगिकी और आंकड़े अभियान की पहुंच के मापन से आगे बढ़कर हम ये कैसे जान सकते हैं कि अभियान सिर्फ लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है बल्कि इसका सच में कोई गहरा असर भी हो रहा है? इसके प्रभाव का आकलन किस प्रकार से किया जा सकता है?
1: ये बिल्कुल सही है कि जब भी हम कुछ योजना चलाते हैं, कोई कैंपेन चलाते हैं, तो ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, आवश्यक भी है कि उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, जो टारगेट हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम कितना सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इसके हमारे पास कई तरीके हैं। जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास जो हमारा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है उनके कई डी एडिक्शन सेंटर्स वगैरह हैं, काउंसलिंग सेंटर्स वगैरह हैं, तो वहां पर कितने लोग सहायता के लिए पहुंच रहे हैं। तो जरूर जब हम ये कैंपेन चलाएंगे तो वो नंबर बढ़ेगा पहले, क्योंकि उनमें जागरूकता आएगी। फिर धीरे धीरे अगर ये कैंपेन प्रभावी होगी तो जो लोग ड्रग ले रहे हैं उनका नंबर भी कम होना चाहिए, तो उसमें हम वो परिवर्तन देखेंगे। दूसरा जो है, जैसा कि आप जानते हैं, जो अल्कोहल का जो ऑफटेक है उसको भी हम लोग देख सकते हैं कि उस पर किस तरह से चेंज आ रहा है। और इसी तरीके से जो सरकार का जो फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, तो जो पिछले आंकड़े मैंने आपको बताए थे कि अल्कोहल से कितने प्रभावित हैं, ड्रग्स से कितने प्रभावित हैं, तो ये जो है वो फैमिली हेल्थ सर्वे से आया था। तो उस तरह के सर्वे से भी हमें जानकारी मिलेगी कि हमारी जो एफर्ट्स हैं, जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उनका धरातल पर कितना प्रभाव पड़ा है।
0: जी, धरातल पर प्रभाव क्या है ये जान रहे हैं। फीडबैक के माध्यम से इस सिस्टम को और अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसी दिशा में हम चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये म्यूजिकल ब्रेक।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आज के हमारे अतिथि हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी, और आज का हमारा विषय है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। सर, आपसे अगला प्रश्न हमारा ये होगा कि सरकार ये कैसे सुनिश्चित कर सकती है कि नशा मुक्त युवा अभियान से उत्पन्न प्रगति 100 सप्ताह की अवधि के बाद भी बनी रहे और ये एक सतत युवा एवं सामुदायिक आंदोलन का रूप ले, यानी कि कॉन्टिन्यूटी में चलता रहे इवन आफ्टर द अभियान।
1: ये बिल्कुल सही है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक इवेंट नहीं है, सीरीज ऑफ इवेंट नहीं है, ये ऐसा प्रयास है जिसमें हम चाहते हैं कि पूरा मानस बदल जाए, पूरी

0: सोच बदल जाए। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि कोई भी आदत को एकदम डीपली इनग्रेन होने में, उसको हमारी आइडेंटिटी में समाहित होने में 100 सप्ताह का टाइम लगता है, लेकिन लोग बदलते जाएंगे, नए युवा इसमें जुड़ते जाएंगे। तो इस कारण से ये जरूरी है कि न केवल हम इसका आकलन करें, बल्कि हम किसी न किसी रूप में इसको आगे चलाते रहें। तो जो हमारे जो वॉलेंटियर कार्यक्रम माय भारत है और जो NSS स्कीम है, तो उसमें हम कई थीम्स पे काम करते हैं। तो उन थीम्स में हम इसको एक महत्वपूर्ण स्थान देंगे, जिससे कि लगातार इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बनी रहे। और ये जो विभागों का जो कोऑर्डिनेशन शुरू हुआ है, इसको भी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म दे दिया गया है। माननीय गृह मंत्री जी के चेयरपर्सनशिप में एक कमिटी है एनकॉर्ड, तो ये एक स्ट्रक्चर जो है ये आगे भी लगातार चलता रहेगा, काम करता रहेगा। विभाग आपस में समन्वय करते रहेंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि ये जो समस्या है ये हमारे राष्ट्र में, न केवल हम इसको जड़ से उखाड़ फेंकें, बल्कि ये वापस पनपने पाए।
1: अगर कोई परिवार या युवा अपने आसपास नशे की बिक्री देखता है या खुद मदद चाहता है तो वो सरकार से कैसे संपर्क कर सकता है? क्या इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर या पोर्टल बनाया गया है?
0: सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री का एक डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर है 1444-6144। तो यदि कोई भी सहायता चाहता है तो वो इस नंबर को डायल करके प्राप्त कर सकता है।
1: इस अभियान को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में प्रशासनिक स्तर पर राज्यों या स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बिठाने में क्या कुछ चुनौतियां आपने देखी हैं, और मंत्रालय यदि उनका कोई समाधान कर रहा है तो उसके बारे में आप हमें अवगत कराएं?
0: जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इस प्रयास में हम सभी एकजुट हैं, और हम जानते हैं कि भारत जो है इस मामले में थोड़ा ज्योग्राफिकली एक डिसएडवांटेज पोजीशन में है, क्योंकि हमारे पश्चिम में जो है वो गोल्डन क्रेसेंट है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, जहाँ की इसका प्रोडक्शन काफी होता है, और इसी तरह से हमारे पूरब में जो है वो गोल्डन ट्रायंगल है, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, तो उसके बीच में हम पड़ते हैं। तो जो इस तरफ के जो राज्य हैं उनमें नेचुरली इसका प्रभाव ज्यादा होगा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर या पंजाब, हिमाचल इस तरफ, फिर श्रीलंका की तरफ जैसे तमिलनाडु वगैरह है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये सारी राज्य सरकारें, सभी राज्य सरकारें और खासकर ये राज्य सरकारें इसमें पूरा सहयोग केंद्र के साथ कर रही हैं, और हम सब इसमें एकजुट हैं। जैसा मैंने आपको एनकॉर्ड बताया कि ये जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर माननीय गृह मंत्री जी के चेयरपर्सनशिप में है, तो इसी तरह से हर राज्य के चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की इस तरह की एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते हैं, तो उसमें जो सारे कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं वो एड्रेस कर लिए जाते हैं। तो इसमें सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं और हम जरूर इसमें सफल होंगे।
1: भारत के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा सर? और एक सामान्य नागरिक परिवार, शैक्षणिक संस्थान या सामुदायिक संगठन नशा मुक्त भारत के राष्ट्रीय संकल्प में योगदान देने के लिए क्या कर सकता है?
0: जैसा हमेशा होता है कि हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम सभी साथ में हैं, और यदि प्रत्येक व्यक्ति खुद पे ध्यान देगा तो अपने आप जो हमारा गोल है वो हम अचीव कर लेंगे। मेरा हमारे राष्ट्र के युवाओं के लिए संदेश ये रहेगा कि जो ये जीवन है ये एक भगवान की गिफ्ट है, ये जीवन एक जिम्मेदारी भी है और एक जरिया भी, ये विरासत भी है और नजरिया भी, इसे व्यर्थ न जाने दें, इसे जिएं, स्वयं को जानें, इसकी कमान खुद संभालें और खुद को उपहार दें उस जीवन का जिसे आप जीना चाहते हैं, जिसके आप योग्य हैं। अगर इंग्लिश में बहुत शॉर्ट में कहूंगा, लीड योरसेल्फ टू द लाइफ यू डिजर्व। बेस्ट विशेस, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: श्री सुनील पालीवाल सर, आज आपने हमारे देश के करोड़ों युवाओं को जो संदेश दिया है और जिस तरह सरकार के प्रयासों व योजनाओं के बारे में आपने बताया है वो वाकई प्रेरणादायक है। युवाओं को खेल, कला और सकारात्मक कार्यों से जोड़कर ही हम नशे के इस जाल को तोड़ सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने और अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इस अवसर के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी।
1: इसी के साथ कार्यक्रम के संयोजक प्रमोद कुमार वत्स और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूं आपसे अनुमति। नमस्कार।

0: विशेष आग्रह रहा है। वे तमिल संस्कृति को विश्व की अमूल्य धरोहर मानते हैं, जिसे उन्होंने अपने जनप्रिय कार्यक्रम मन की बात से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा व्यक्त किया है।
1: हमें गर्व है कि दुनिया की सबसे पुरातन भाषा हमारी तमिल भाषा है।
0: राष्ट्र के प्रति दायित्व, समाज के प्रति कर्तव्य और मानवता के प्रति समर्पण, इन्हीं मूल्यों को विकसित करता है विश्व हिंदू विद्या केंद्र। राष्ट्र निर्माण की दिशा में विश्व हिंदू विद्या केंद्र बच्चों तक किफायती आधुनिक शिक्षा का प्रकाश पहुंचाता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सभी तक शिक्षा पहुंचाने का संकल्प समाहित है। इसलिए मातृभाषा में उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम उपलब्ध हो, इसे सुनिश्चित किया गया है।
1: द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू प्रमोटिंग इंडियन लैंग्वेजेस। हमने तमिल जैसी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए मातृभाषा में हायर एजुकेशन का विकल्प भी युवाओं को दिया है।
0: नए संकल्पों, नए लक्ष्यों के साथ जब देश तेज गति से विकास कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के संकल्पों से प्रेरणा लेकर विश्व हिंदू विद्या केंद्र शिक्षित, कुशल और दक्ष युवाओं को भविष्य के कर्णधार के रूप में तैयार कर रहा है। देश सेवा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ विश्व हिंदू विद्या केंद्र की ये यात्रा अनवरत जारी है।
2: The three iconic moments which are going to take place in the annals of Hindu Vidyalaya is going to happen right now. With humble pranams, I request our Honorable Prime Minister Ji to unveil the virtual AI lab, ATL lab and the patriotic song Pendrive release. Ji, please.

तमिलनाडु के राज्यपाल श्री राजेंद्र हार्लेकर जी, डॉक्टर एल मुरुगन जी, थिरु राजमोहन